गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया, एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा, किन्हीं निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा, किन्हीं ग्रह

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तरभव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी परत्र्य त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैस पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई

पेट भरे पशुआ जो सोयो मनुख जन्म है हारे साहब कहने जी सोहनी सेज जिस ते तेनू बड़ी नींद पई आउंदी है ना तेनू नहीं पता है तेनू खा रही है तेरे जीवन नू ए सेज ए सोना बिस्तर ए आराम दे बिस्तर तेरी जीवन दी बड़ी कीमती पूंजी अजाई गवारे इथे सुता सुता तू जिंदगी दे बड़े कीमती स्वास बेकार गवारे जेड़ा जाके गुरु द्वारे ते आ प्रभु द्वारे ते आ के भाई साहब भाई गुरदास जी तो कहंदे ने वो कहंदे ने जेड़ा बंदा गुरु दर तक पहुंचिया नहीं ना गुरु दर तो बेमुख रह गए कहंदे ने बहुत वड्डा हथियार है ध्यान देना कातर है बहुत वड्डा एक होंदा दूजे नू कतल करना समाज कहंदा है कानूनन गुनाह है जुर्म है एक होर होंदा है आत्मघात कर लेना वो जिहड़ा मारी जावे ते मुकदमा विचारे की चलाउण पर जे किते पहला फड़ लैण जो कहंदे ने ए आत्मघात करदा होया फड़िया गया खुदकुशी करन दी कोशिश पकड़े आ गया फड़ के अंदर कर दिंदे ने कहंदे ने जे आ किसे नू मारना ते अपने आप नू मारना लेकिन नहीं अपने आप नू मारना ओ तो वड्डा गुनाह है ते महाराज कहंदे ने संसार दे विच जिहड़े आत्मघाती लोक ने ना आत्मघाती है जगत का साई संसार नू कतल करन वाला कसाई जिहड़ा बंदा अपने आप दा घात कर रहा ते अपने आप दा घात ही तां हो रहा जिहड़ा बंदा अपने आप नू खत्म कर रहा खान पीन मौज करन ते सुते रहन च अपने जीवन दा नाश मार रहे हैं साहब कहंदे ने इहदे नाल वड्डा होर आत्मघाती कौन होवे भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने इहदा माफ नहीं कीता जाणा हत्या मूल ना उतरे बेमुख गुरुद्वारे गुरु के दर तो बेमुख बंदा भगती वाले पासे मूह ना करन वाला बंदा नाम वाले पासे ना लगन वाला बंदा अपने आप बारे ना सोचन वाला बंदा अपनिया बिरतियां उत्ते निगाह ना रखने वाला बंदा तो कतल हो रहा अपने आप नू कतल कर रहा आत्मघाती है इनू किवें हत्या।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग है, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वही।

दुनिया के सब रंग सतनाम श्री वाहगुरु के अंदर आ गए। जिसने नाम जपा उसे फिर और किसी मस्ती की जरूरत नहीं रहती। शराबी को मस्ती है, जुआरी को मस्ती है, बाबा जी कहते हैं ये मस्ती जब आ जाए तो फिर इतने आनंद में डूब जाता है इंसान, किसी होछे रस में आनंद नहीं आता उसे। हजूर कहते हैं मिलता किसी किसी को,

छाया है उदो तो मेरे मन नु शांति हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेड़े वैरी सन ए पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चितवदे सारे ही चंगा चितवदे हैं ये सब तेरी कृपा है ये तेरी मेहर है तू तो मैनू इनिया बख्शिशा कीतिया हैं इनिया रहमत कीतिया हैं पातशाह हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्य फिर अपने आप रास हुंदे हन ते सतगुरु तेरी मेहर है तेरी कृपा है।

सच्चे गुण गा जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुण गा गुण गावत ते उतर समय सच्चे के गुण गा गुण गावत तेरी उतर समैल बिरस जाए हो मैं दुख है जन्म कर्म

पता नहीं सी कि इस तरह परमेश्वर का सदा आ जाएगा। साहब जी कहते ने इंसान हर काम महूर्त देख के करता है। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी का काम होवे ता इंसान सारे तो पहला दिन देखदा, तारीख देखदा, महीना देखदा, साल देखदा, मुहूर्त देखदा। ए काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारिया नू बुला लवां, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहिब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम महूर्त ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरन लगिया तू कोई महूर्त ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा, सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान हर काम तू महूर्त दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ये महूर्त नहीं देखन देंदी। मरण ना मूर्त पुछया, पुछी थित ना वार, मौत ने ना दिन देखन देता, ना तरीक देखन देती, ना कोई महीना देखन देता। बस इन्ना ही पता लगा चंगा भला सारे परिवार नूं मिलके घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस। घरों ते तुर पिया, परिवार नूं मिलके बड़ा खुश है, पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना। घर वाले कारु डीकदे पए ने, आ जाणगे शाम नूं, मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया। जांदियां जांदियां रस्ते विच ही हुक्म आया, मौत हो गई। साहिब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया। एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया, ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा कि आखरी वेले किसे नूं मिल ही लवां, नहीं। परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नूं मिलण दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ़ है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तो अपने प्यारियां नूं रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

फराज मिल जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार शोभा सोना रूप सारा कुछ छड के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार घोड़े लाल लाख बयानी हाथी घोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चाह नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

माथा रोवे खटिया लेके पाई वेड़े विच बैठी मां रोंदी पई है जिस पुत्र नु पालिया जानदा ता मेरा समा सी उस पुत्र नु मरिया देखिया जिनू चार भरा आए चुक के लै तुरे एक पासे मार हो रही है दूसरे पासे लट छिटकाए तिरिया रोवे तिरिया औरत नु के एक पासे वाल खिलार के औरत पई रोंदी है जिदे सिर दा साईं चला गया ओदे दुख नु कौन समझ सकदा है। सैब जी धन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने औरत भी पति नाल ही सोंदी है जद तक पति जिउंदा है आदर सारे दिंदे ने पति ना रवे ते दुनिया विच जीवन जीवना बड़ा औखा हो जांदा है। साहब जी

बंके कहते ने पति जिन्ना दे पति मर गए जिन्ना वापस नहीं आना उन औरतां दे बारे साहब जी कहते ने तेन क्यों रहन विहानी उन्हां दियां रातां हुण किवें बीतन क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहब जी बाणी विच बयान करदे ने ओ पत्नी किवें जीवन बितावे जिहदा पति एक वारी गया ते मुड़ के वापस नहीं आया।

कदी हसो ना, क्यों मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर है। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन भी कुछ

तू हिंदुस्तान दा बादशाह है, जहां पना आली जा दिले इलाही शहनशाह, अनेक नामा नाल दुनिया तुहानू याद कर दी सलाम कर दी। तुसी क्यों रोंदे? अकबर बादशाह ने बड़ी कमाल दी गल कही, कहन लगा बादशाह कहन वाले शहनशाह कहन वाले ता बहुत ने, पर एक कोई सी मेरी मां जेड़ी क्या कर दी सी वे अकबरा, हुण इस करके रोना के वे अकबरा कह के कौन बुलाएगी। क्यों? जद मां कहंदी सी वे अकबरा ता मेरा मन खुशी नाल झूम उठदा सी, जो मां दी झिड़क विच भी आनंद है ओ दुनिया दी सलामा विच नहीं।

पूर कर दें दी इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसी दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नु नाशवान समझो ताकि इस दुख नु तुसी सह सको ए समझ सको ए हुकम सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है। एक दिन असी भी जाना है

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइयां जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है, ये भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव पबाड़े। मुख कहंदे ने मोह, मोह तू भी कहंदा है मैं जिनू चाहवां उनू मार सकदा, जिनू चाहवां उनू छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है,

साढ़ा भी हुण आखरी समा आ गया है, ज्योति जोत समाण दा समा। पर साड़ी इच्छा है गोविंदवाल साहब जाके असी अपना शरीर त्यागीए। ये सुनदे सार सारियां संगतां वैराग च आ गई हैं कि प्यारे गुरु ज्योति जोत समा जाणगे असी किस तरह जीवांगे। सारी संगत परिवार इकट्ठे हो गए। गुरु रामदास अमृत वेले संगतां दे नाल अपने परिवार दे नाल अमृतसर साहब तो चले गोविंदवाल साहब पहुंचे। शाम नूं जदों पहुंचे हुक्म कीता जाओ भाई इशनान करो आराम करो, असां सवेरे शरीर त्यागना है। पर किन्नू आराम चंगा लगता है, किन्नू नींदर आंदी है। आज दी रात बीत गई, अमृत वेला होया, सतगुरां इशनान कीता है, अपने आसन ते बैठ गए ने। चार सवेरे संगत बैठी है, हाथ जोड़ के अखां विच अथरू ने। गुरु रामदास जी दे सुपत्नी माता पानी हाथ जोड़ के कहन लगी, मैनू भी नाल ले चलो, तुहाडे पिछे रह के हुण मैं की करना है। गुरु रामदास जी कहन लगे, भाई जीवन ते मौत परमेश्वर दी हाथ है। जीवन ओह देंदा है, जीवन लैंदा भी ओह है। इस शरीर नूं गवाण दा किसे नूं कोई हुक्म नहीं, ओहदा हक नहीं बनदा। समा साडा आया है, असां ज्योति जोत समाणा है, पर तुसां हाले बड़े काम करने। फिर प्यार भरी इक निगाह अपने सुपुत्र गुरु अर्जन साहब वल देखिया, एक निगाह सारी संगत वल देखिया, फिर अखां बंद कर लईयां। देखण वालिया नूं इस तरह जापदा है हुणे अखां खुलण गईयां, हुणे कुछ कहणगे, हुणे बुल हिलणगे, कोई अमृत बचन सुनाणगे। पर समा ओह आ गया ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। धन गुरु रामदास ज्योति ज्योत समा गए ने, पर उपदेश कर गए किसे ने रोना नहीं, क्योंकि रोण दा लाभ कोई नहीं। मत मैं पिछे कोई रोव सी, सो मैं मूल ना पाया। रोना नहीं, परमेश्वर दा कीर्तन करना है, सिमरन करना है, ताकि सिमरन सदका विछड़ी रूह नूं परमेश्वर अल्लाह दे चरणां विच जगह मिले। ए उपदेश कर गए ने, भाई अगर कोई विछड़ जाए दुनिया ना त्यागना, वैराग विच पै के अपना शरीर ना गवा लेना, दुनिया विच रहना है, दुनिया नूं नाशवान समझना है। दुनिया दे काम भी सारे करने ने, पर नाशवान समझ के किसे दा बुरा नहीं करना, किस ना ठगी नहीं करनी। जीवन उच्चा ते सुच्चा बताना है। गुरु साहब जी कहंदे ने, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत शब्द ना पछाने। नांगा आया नांगो जासी, ज्यों हस्ती खाक शाने, संत सज्जन सुनो सब मीता, झूठा ए पसारा, मेरी मेरी कर कर डूबे, खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा, इक नाम ने निस्तारा करना है। अज दा कीर्तन आपां सुन के अपने मना विच धारीए, इक दिन मरना है, ताकि जीवन सफला करके जाइए।

मैं अनजान हाँ, मैं तैरना नहीं आता। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनूं ध्याया, तू मनुखां तू देवता।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे, जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ किरपा करो सरवण कर।

सतगुरु कहिंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच को मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नूं पुछिया, आ छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने ना, अजकल ते ढाईआं ढाईआं तिना तिना सालां दे दाखल करवा दित्ते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है? ना, आपस विच प्यार नाल हसदे ने, खेड़दे ने। सतगुरु कहिंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हिरदे रूपी वेड़े विच परमाता परमात्मा रूपी नाम दा दे तू चानना कर लवें, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना है जे परमात्मा रूपी नाम दा तू हिरदे रूपी वेड़े विच चानना कर लवें। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा भी रल के इन्हों तुकानों पढ़िए कोई रसना खाली।

कितने भी चंगे कर्म कर लवे ओदे कर्म कीते होए सारे निष्फल चले जांदे हैं। जिमें कि 18

बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे है

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे,

मत भूले कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताह कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिर तू भीख, कहु महादान होय के मांगो धन देत हो, कहु महाराजन को दीजत अनंत दान, कहु महाराजन ते छीन चित लेत हो।

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

संस्कृत ग्रंथों में जय श्री जयंत श्री आदि नावों नाल संबोधित श्री गुरु ग्रंथ साहब विच अंकित जैत श्री ही है। बड़े मनोरंजक अते कठिन राग में शुद्धता सहित महान गायक ही गा सकते हैं। जैत श्री का प्रभाव सुख अते खुशी देने वाला है। खुशी लैण लई मन दे आलसिया उगलाना वाला सुभा छड हीरे विच रतन नाम नू वसा के गुरु बख्शिश लैनी पैंदी है। इस राग नू मनोरंजक बनाउण लई इस दे स्वरूप विच ईशव दैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। आरोह विच ऋषव अते दैवत वर्जित हैं। इसका वादी सुर गंधार अते संवादी निषाद है। यह राग दिन के चौथे पहर गाया जाता है। राग जैत श्री विच दो शब्दों का कीर्तन सरवण करो। पहला शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है। इसनू गा रहे हैं बीबी नवेदिता कौर जी। शब्द की तुक है कोई जन हर सियो देवै जोर। दूजा शब्द गुरु रामदास जी की रचना हर हर सिमरो अगम अपारा भाई महेंद्र सिंह जी सागर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला शब्द कोई जन हर सियो देवै जोर।

कौन कर रहे है। ए बेनती कर रहे है भीखम शाह, जो जात का मुसलमान है, पंजाब की धरती का रहण वाला, आज भीखम शाह जदों सुबह नमाज अदा करन लगा, भीखम शाह दे नाल सारे मुरीद भी सन, और जिस वेले पश्चिम वाल भीखम शाह नमाज पढ़न वास्ते खड़ा होया, तां भीखम शाह नू अदुति प्रकाश दे दर्शन होए, तां भीखम शाह ने सजदा पश्चिम वाल करन दी बजाए पूर्व वाल कीता। सारे मुरीद पुछन लगे, आ भीखम शाह जी, आज तक तुसी रोज इतनी उम्र बीत गई, सजदा पश्चिम वाल करके नमाज अदा करते हो, क्योंकि हर एक मुसलमान पश्चिम वाल सजदा करके नमाज अदा करता, ते आज तुसी पूर्व वाल क्यों सजदा कीता। तां भीखम शाह कहन लगा, जिस खुदावंद नू मैं रोज पश्चिम वाल नमाज अदा करता सा, आज उसने पूर्व दे विच पटने शहर दे विच जन्म लिता है। सात सगत बोलो श्री। सारे मुरीद हैरान रह गए। भीखम शाह कहन लगा, हां जे मेरे ऊपर विश्वास नहीं तां फिर सारे चलो पटने दी धरती ते, किथे बिहार दी राजधानी पटना, किथे पंजाब पटियाले दे कोल रहण वाला। भीखम शाह अपने मुरीदा नू लै के, उस वेले कोई रेल गड्डियां दे साधन नहीं सन, एक घुड़सवारी दे साधन होया करदे सन। अपने मुरीदा नू नाल लै के कितने दिन यात्रा करदा होया, जदों भीखम शाह उस स्थान ते आ पहुंचिया जिथे माता गुजरी दी कुख विचों धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे घर गोबिंद राय जी प्रगटे। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन करन भीखम शाह पंजाब तो तुर के पटने दी धरती ते आया, और आके अरदास कीती के मैनू एक वरा उस बालक दे दर्शन कराओ जिसने तुहाडे घर जन्म लिता है। माता गुजरी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे माता जी, माता गुजरी जी कहन लगे, अजे साडा जो ए लाल है बहुत छोटा है, ए बालक छोटा है, असी अजे 40 दिन भी नहीं होए, इनू बाहर नहीं कढ़ना, किते नजर ना लग जावे किसे दी। भीखम शाह कहन लगा, मैं तां होर कुछ नहीं मंगदा, तुहाडे कोलों पैसा नहीं मंगदा, कोई पदार्थ नहीं मंगदा, मैं तां इतनी दूरों चल के आया हां अपने मुरीदा दे नाल सिर्फ इस वास्ते के एक वरा मैनू गोबिंद राय जी दे दर्शन करा दे। सात सगत बोलो श्री। ता मामा कृपाल चंद, मामा कृपाल जी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे मामा सन, माता गुजरी दे पाई, कहन लगे, चंगा तेनू दर्शन कराउंदे हां फकीर, आ भीखम शाह तेनू दर्शन कराउंदे हां, क्योंकि तेरे मन विच जो प्यार है वह सच्चा प्यार लगदा है। मामा कृपाल जी गोबिंद राय जी नू दुशाले विच लपेट के जदों लै के आए, दलीजां विच खड़ोते होए आख्या, इथों ही दर्शन कर लो, अजे गोबिंद राय जी नू दलीज विचों बाहर कढ़न दी आग्या नहीं मिली।
ਰਸ਼ਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 5 ਵਾਰਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ। ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਡੰਡੌਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਮੁਰੀਦ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਕੋਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁੱਜੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁੱਜੀ ਮਿਸਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਸੱਜੀ ਕੁੱਜੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਸਨੇ ਖੱਬੀ ਕੁੱਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ।

आए जी, कुछ वड्डे होए, चार पंज साल दे लगभग आप दी उम्र, रोज छोटे छोटे बच्चियां नू नाल लैके ते गंगा दे किनारे खेलने जाऊंदे सन। इस गंगा दे घाट ते शिव दत्त पंडित नाम करके एक पंडित तपस्या करिया करदा सी। 70 साल दी जिस दी उम्र, श्री रामचंद्र भगवान जी दा उपासक सी। रोज मूर्ति श्री रामचंद्र जी दी अगे रख के, प्रसाद अगे रख के अरदास करदा सी, हे भगवान भोग लाओ। और इस शिव दत्त पंडित नु एक बार अपना दर्शन दियो प्रभु। रोज अरदास करे कि इतनी मेरी उम्र हो गई, हुण मैं बुढ़ा हो चलिया हां, एक बार अपना दर्शन करा दियो। किते ऐसा ना होवे के तेरे दर्शन कीतियां बगैर ही इस देही विचों प्राण निकल जान। साथ सगत बोलो श्री और फिर मैनू आ तेरे दर्शना वास्ते फिर जन्म लेना पवे। हे मेरे प्रभु, एक वरा दर्शन कराओ। ता आज जदों अरदास कर रहे है, किस दी अरदास? क्योंकि बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। जदों कोई मन नाल प्रेम नाल अरदास करता है ता उसकी अरदास प्रभु दे चरणा विच पहुंचदी। गोविंद राय जी खेडदे हुए आ गए ते पंडित शिव दत्त नु वेख्या के बेनती कर रहे है, प्रभु भोग लाओ, प्रसाद अगे रखिया, लड्डुआं दा थाल भगवान श्री रामचंद्र दी मूर्ति अगे अरदास विच जुड़े है। ताई गोविंद राय जी ने आके थाल विचों एक लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया। पंडित शिव दत्त ने देखिया के कोई बालक है और थाल विचों प्रसाद दा लड्डू चुक के मुंह विच पा ले, ता पंडित शिव दत्त नू बड़ा क्रोध आया। कहन लगा, तू कौन है और मेरी पूजा विच विघ्न पा रहे हैं, जा चला जा इत्थों, ते फिर कल या दोबारा आके मेरी पूजा विच विघ्न नहीं पाउना। साहब जी चले गए बच्चियां नाल खेडदे हुए गोविंद राय जी अगे। अगले दिन पंडित शिव दत्त फिर जदों पूजा विच जुड़िया और अरदास कीती, भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर खेलते हुए आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा ले। साथ सगत बोलो श्री। आज पंडित शिव दत्त बड़े गुस्से विच गोविंद राय जी दे पिछे पिछे दौड़िया पकड़न वास्ते। अगे अगे गोविंद राय जी, पिछे पिछे पंडित शिव दत्त। गोविंद राय जी दौड़दे हुए माता गुजरी दी गोद विच जा बैठे। कहन लगे, मां जी आ पंडित सानू गुस्सा करदा। ताई पंडित शिव दत्त भी आ पहुंचिया। कहन लगा, ए तुहाडा लाल है? हां मेरा लाल है। पंडित जी हुक्म करो, की गल है? माता गुजरी ने पुछया। ता कहन लगे, आज 2 दिन तो मेरी भगती विच विघ्न पा रहे है। मैं प्रसाद रखदा हां भगवान राम जी दी मूर्ति अगे के प्रभु भोग लाओ ते ए थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लैंदा। ता गोविंद राय जी कहन लगे, मां जी असी तां इहदी भगती विच कोई विघन नहीं पाउंदे, ए आप ही रोज कहिंदा भोग लाओ ते असी जदों

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार भाई लैणे दा भी, क्योंकि पता सी कि आज जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे कि इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगतां, मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन वो चांदी ते डिग पे, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग्या, जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरा चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच भर के अपने अपने करां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे भाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठा लै आए लैणे नू, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासे दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने भाई लैणे नूं कोल सदिया,
अपने हृदय नाल ला के पाई लेने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लेनिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हन और की कहिंदे हन।

0: हरनाक्ष नां दा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान दी भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफी पान का हुक्म दिता। प्रहलाद के दिल विच आवाज आई, पाल तपते थमा नु जफिया आपे तेन रम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पाली पर उदा वाल भी विंगा ना होया। गुस्से विच आके राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
1: मैं भी प्रहलाद बनांगी, मां भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी मेहनत मेरी औलाद पुठे पाट पढ़े जा रहे।

कितने भी चंगे कर्म कर लवे, ओदे कर्म कीते होए सारे निष्फल चले जांदे। जिवें कि 18 तीर्थां दा इशनान, परोपकारी जीवन बतीत करना, बहुत सारा दान पुन करना, बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे है,

चाहिदा है मंगे गलत काम ना करे ओही बिरती धारण कीती रखे। ते महाराज कहंदे जे किते बालक वाली बिरती बनी रह जावे ना बंदे दी ता बड़ा आनंद है। पायो बाल बुद्ध सुख रे ना नुकसान दा डर ना कोई परेशानी ना जिम्मेवारी ना कोई बोझ बाप जाने। और चंगा बच्चा जिन्हू बनना आ गया वो बाप दी हर शह दा अधिकारी प्यार दा भी अधिकारी दुलार दा भी अधिकारी और माल दा भी अधिकारी। जो कुछ बाप दा है वो पुत्र दा ही ता है पर चंगे पुत्र दा। ते जे बच्चा नलायक हो जावे ते कई बारी बाप ऐसा भी कहंदे ने कोई नहीं चल खा तू इसे तरह मैं फारस खती लिख देंगा मैं मर जावा तेनू कौडी ना मिले मेरे माल विच। ते जे बच्चा प्यार वाला हो आग्याकार हो ते कई बारी ऐसा भी हुंदा है उहदे कोलों सहजे खुनामी हो जांदी ते बाप कहंदा कोई गल नहीं बच्चा एदी नीयत फतूर नहीं है एदी नीयत खराब नहीं बचपना है कोई गल ए जड़ी गलती हुई है एदी अकल दी डगमगाहट है ध्यान देना। बच्चा जिस वेले मां दी गोद विच हुंदा है ना उहनू कोई चीज पकड़ाओ पकड़ भी त नहीं सकदा मां नूं ही ख्याल रखना पैंदा। ओ खुराक मंग नहीं सकता मां नूं आपे उहदी खुराक दा ख्याल रखना पैंदा। खीर आधार बारक जब होता बिन खीरे रहन न जाई सार संभाल माता मुख नी रहे मां उहदी सार संभाल करदी ए उहदे मुंह च दुध देंदी ए तब वह तृप्त अगाई रज जाता। जरा कु वड्डा हुंदा है चीजा पकड़दा है हत्थां विच पकड़न दी शक्ति आउंदी फिर भी चीजा हथों टिक जांदियां ने कई बारी उल्टी सुल्टी पकड़ लैंदा कई बारी पकड़दा है अपने शरीर ते मार पैंदा पता नहीं पकड़न दा। फिर मां बाप दा चा उठदा इहनू खड़ा करो पैरां ते खड़ा करो। हर मां बाप ये चाहते ने कि साडा बच्चा छेती तो छेती अपने पैरां ते खड़ा हो लेकिन ध्यान देना अपने पैरां ते खड़ा होके भी कई बारी बच्चा ये चाहता कि बाप उंगल पकड़ी रखे बड़ी वधिया गल आसरा बाप दा बनिया रहे बाप दा आसरा बनिया रहे ते अपने पैरां ते खलो के निश्चिंती बड़ी नहीं तो जिसले बच्चा खलोंदा है मां फड़दी है हत्थां तों खड़ा कर दिंदी ते फिर वह चाहती अपने पैरां ते खड़ा होवे छड़ दिंदी तो बच्चा डगमगा डगमगा जाता है। लत्तां जिहड़ियां ने उह साथ नहीं दिंदियां कमजोर लत्तां अभ्यास तो हीणियां लत्तां साथ नहीं दिंदियां अजे उन्हां नूं सीधा खलोना नहीं आया डिग पैंदा संभलण दा बड़ा जतन करदा फिर भी डिग पैंदा ते जे उह बाप दी मां दी उंगली पकड़ी रखे नहीं डिगदा। बाए नहीं बंदे दी अकल दी गल है मालक दी उंगल पकड़ी रखे गुरु दी उंगली पकड़ी रखे नहीं डिगदा डिगण दा डर मिट जांदा है बल्कि मालक दी उंगली छड के तां इतनियां गलतियां हो जांदियां ने। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर वेले मां इधर उधर हो गई बच्चे ने चूल्हे विच हाथ पा दिता अग नू हाथ पा ले उन्हू सोहनी लगती अग सोहनी लगती फुल भी सोहना लगता है अग भी सोहनी लगती है लेकिन हाथ साड़िया ते पता लगा ये फुल नहीं सी अग साड़न वाली चीज है पता लगा पर जे किते मां सिर ते आ गई है उन्हें छेती नाल खिच के पिछा कर ले अग च हाथ पाउण नहीं दिता। सप सोहना लगता है वेखण नूं खूबसूरत लगता है उहदियां कौडियां उहदे उत्ते कुदरती प्रिंट ऐसा प्यारा लगता है बच्चा उस नूं हाथ पाउंदा है। इह गल वखरी है कि सप दी बिरती च अपनी अखी वेखी इह चीज है कि बच्चे ने चुक के झोली च पा लिया ते सप ने कुछ नहीं किया। बालक दी साधारणता बालक दे भोलेपण दे उत्ते सप नूं भी तरस आ गई ਇਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸੱਪ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਫੜਿਆ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਸਾਈਕਾਲੋਜੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਸੱਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ लेकिन मां नूं तां इह ख्याल नहीं ना कि सप लिहाज करेगा मां जानदी है सप दा काम है डंग मारना ते जे बच्चा डंग वाले डंग मारन वाली चीज नूं हथ पाउंदा है ते मेरी जिम्मेवारी है कि बच्चे नूं बचाउणा। साहिब कहंदे ने चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले हथ नाल फड़दा सप नूं अग
माता पिता कंठ लाए राखे, मां प्यो फड़ के धू के छाती ना लल ने की करदा। ज्ञान देंदे ने, ए फड़न वाली चीज नहीं है, फड़न वाली चीज ए नहीं है, फुल दे देंगे हाथ में, फड़न वाली चीज ए है, कोई खिडौना दे देंगे, फड़न वाली चीज ए है। ये ख्याल करना, बच्चे ने खिडौना ले लिया, खिडौना बड़ा प्यारा है, फुल बड़ा प्यारा है, हुण उहदे कोल मां बाप नूं खतरा कोई नहीं, कोई हर्ज नहीं, फुल पकड़ी रखे, खिडौना पकड़ी रखे, लेकिन बच्चे नूं की हो गया, बच्चा वह खिडौना ते फुल लैके मां की गोद छड़ गया, बाप की गोद छड़ गया, अगां पिछा हो गया, खेड़दा फिरदा, मां आवाजा मारदी है ते वह पकड़ाई नहीं देंदा, अगे अगे खिडौना लैके बच्चा है, पता नहीं उन्हें डर है मां खो ना लवे, कैसी कह, अणग्ञानता की गल है कि जिस मां ने खिडौना दिता, जिस बाप ने दिता, उन्हें खोन वास्ते थोड़ा दिता, होर भी देगा, लेकिन बच्चा घबराया है कि मेरे को खिडौना खुस ना जाए, अगे अगे बच्चा है मगर मगर मां प्यो ने कोई नुकसान ना उठा, कोई गलत ना इहदे कोलो गलत क्रिया ना हो जाए, खिडौना सुट ना पवे, या इसे खिडौने की गलत वरतों करके कोई नुकसान ना उठा पवे। लेकिन दूजा बच्चा एक होर भी है, उन्हें खिडौना ले लिया ते मां की गोद नहीं छड़ता, मां कहती है जा तू हुण खिडौने नाल खेड, मैनू कम कर दे, लेकिन वह मां की गोद नहीं छड़ता, खिडौना भी लई बैठा है, मां की गोद च भी बैठा है, यह दोहरा आनंद लै रहे हैं, खिडौने का आनंद भी लै रहा है, मां की गोद की निग भी लै रहे, आप भी लै सकते, ऐसे बालक बने रहिए ना, ऐसे चंगे बच्चे बने रहिए, गुरु की उंगली भी पकड़ी रखी, गुरु की गोद भी ना छड़िए, गुरु के बख्शे पदार्थों का भी आनंद लेंदे रहिए, गुरु किया बख्शिया दातों का स्वाद भी लेंदे रहिए, ये नहीं दात लैके खिडौना लैके गुरु नूं छड़ जाइए, प्रभु नूं छड़ जाइए, नहीं ऐसा नहीं, वह तो दयाल है, पिता कृपाल आ गया ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना, जो मंगदा दियो, चंगे बच्चे ते खुश हो गए, दियो इनू जो मंगदा है, जो अरदास करदा दियो इसनू, पर बारक की दया मंगदा है, गुरु नानक बालक बन गए, कहंदे ने नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोह हृदय बसे नित चरना, मैं तो होर कुछ नहीं मंगदा, जो कुछ देवे मेरे पिता, जो तेरी मर्जी है दे, पर मैं तो यह मंगना कि तेरे चरणा च मेरा वासा बने। और कहंदे ने शास्त्रकार एक छोटी दृष्टांत मात्र गल कहंदे, कहंदे ने मेले च दो भरा अपने बच्चियां नूं लैके गए, बच्चियां ने बापां दी उंगली पकड़ी हुई, मेला दिखाया जा रहा है, भांत भांत दे पदार्थ उन्हां बच्चियां नूं बाप लैके दे रहे, ते बच्चे खुश होके तमाशा देख रहे ने, पदार्थ छक रहे, बहुत भीड़ विच आ गए, तमाशा बड़ा रोचक है, दो बच्चिया ने तमाशे की रोचकता परच के पदार्थ खांदे हुए, हाथ वेले नहीं रहे, निगाह वेली नहीं रही, निगाह तमाशे वाल है, हाथ पदार्थ छकन वाले ने, ते जे माड़े मोटे हाथ खाली होए ने तो एक दूजे का हाथ फड़ लिया, बाप का हाथ छड़ दिता, दोवां ने छड़ दिता, भीड़ बड़ी है, बाप दोवां का हाथ पकड़ के रखना चाहते, लेकिन भीड़ दे विच ओह तमाशा वेखण वास्ते सुतंत्रता चाहते ने, उस सुतंत्रता वास्ते दोवां ने बाप की उंगल छड़ दी, भीड़ दे उन्हां रेलियां विच उन्हां तकियां विच बाप किधरे हो गए, बच्चे किधरे हो गए, फिर पल्ले की पै गया, एक बच्चे ने चंगाड़ा मारनिया शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, बहुत उची उची रोन लग पे, दूसरा हाणी बच्चा कहिंदा रोंदा क्यों, कहिंदा पिता किथे है, बाप किथे है, हुण की करांगे, तो कहिंदा कुछ नहीं होता, उस बच्चे ने रोने करके चार सियाने बंदिया ने उन्होंने घेर लिया, उन्होंने तरह तरह के पदार्थ देते, उन्होंने चुके मारते ने, कहते नहीं चाहिए, वह परचाते ने खिडाते ने, नहीं खेडते, लेकिन जरा दूसरा बच्चा नहीं रो रहा, वह जो पदार्थों वाल मूह नहीं कर रहा, तो बहुत चीख झाड़ा भी नहीं पा रहा, गंभीर जरूर है, तो फिर उन्होंने लै गए ने सेवा समिति वाले, उन्होंने जाके अपने तंबू च बिठा ले, वह बच्चा रोई जा रहे, फिर बच्चे बच्चे आपस लग पे ने, कहिंदा क्यों रोना है भरा, वह कहिंदा रोना इस करके बाप तो विछड़ गया, तेनू कुछ नहीं होंदा, कहिंदा बाप आपे लभ लेगा, मैनू कोई घबराहट, उंगल मैं छड़ी गलती मेरी है, पर मैं गलती कर सकना, वह नहीं गलती करेगा, वह लभ लेगा, होर थोड़ी देर तक आया कि आया, मैं तो कोई नहीं रोना, मैनू तो कोई घबराहट नहीं, मेरा चंगा बाप मैनू आपे लभ लेगा, मेरे को गलती मापे को मापे नहीं होंगे, पुत्र को पुत्र हो सकते हैं, मैं ओरी उंगल छड़ सकना, वह तो नहीं मैं छेगा, वह भटकदा फिर होना, हमने झट तक आया कि आया, हमने लभ लेगा, मैं ये सच करके जानना, गुरु सानू लभदा फिरदा, असी उंगलां छुड़ा छुड़ा के इधर उधर उत्ते फिरने,
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣੀਏ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੂਨਾ ਚ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਚ ਭਟਕ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਂਗਲ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੂੰ ਬਸਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਚੰਗ ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਤੇਰਾ ਵਿਖਮ ਭਾਵਣ, ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਆਪਾ ਸਭੂ ਮਤ ਸਭੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੇ ਮੋਹਤਾਜ ਬਾਬਾ, ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਾਰਨ ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਣਜਾਣ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਸੰਤੋ ਮੇਰੀ ਰਾਖੇ ਮਮਤਾ, ਬੰਧਨਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਰਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਂਗਲੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਜੂਨਾ ਚ ਭਟਕ ਜਾਣਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਭਟਕਣਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਿਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਗੋਦੀ ਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਲਈ ਚਲੀਏ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਲਈ ਚਲੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਬਹੁਰ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਲਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ।